0: जन सतगुर दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम
1: बेस्टा विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेश कर देने सरब सांची कुर्बानी
2: सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान। कट कट के अंतर की जान तू भले बुरे की पीर पछाण तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान। अंतर जामी सो प्रभ पूरा

0: कसम हमारा ता मेरा अंतर जामी जान।
1: मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ कर्म कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ते उहदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानदा है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनू ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू
0: अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, निरपो पै गुर चरनी लागे इक राम नाम आधार।

मानुक अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान। वो प्रभु सब कुछ जान साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर, ओ गुरु भावनी पूरी कर देवे। खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है। इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है। ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दी दरबार आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी मंग कर ली ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा, गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आके कही तू करता सब किस जानता, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन के अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

बिखूना चात्र को क्यों कर तृपतावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे, पावन लोभी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे। क्यों संत जना हर पीत है देख दर्श अगावे, हर बिन रह न सको एक राती। एक रात भी गैप पैदा है ना, ती परमात्मा में ते मर जान जीवित नहीं रह सकता, पर सानू ते दिन ही बीत जान देने, महीने लंघ जाते ने, साल बदी दिन आ जाते ने, पर कदी ख्याल ही नहीं किया, कदी सोचिया ही नहीं, कदी विचार ही नहीं किया कि असी भी ऐसी तड़फ पैदा कर ली जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आइए सानू भी शांति ना मिले। ऐसा प्यार होना चाहिए, हर बिल रह न सको इक राती। किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है, जो हर बिन

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है, एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है,

माने अस्सी तीसी फरीद एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ने लिए हाजिर होया। गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोबिंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हाँ, शस्त्र का पुजारी हाँ। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैं होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैं यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र के उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र की, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र चलाना जानता है, उसकी जंग में हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख बात। और उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नूं पंज ककार की रहत दिती है, तो रहत के नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख बात बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब कहिंदे

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंग बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर, धनुष बाण और उसके तीर जड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जाना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वो बार नहीं आओगे, जो एक बार अंदर तस जाना जो खिचोगे नाली अंदर भी नाली लै आऊंगी ओदिया दो कड़िया होंदिया एव मुड़िया हो एक सीधी होंगी तो दो एव मुड़िया होंगी सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहिंदिया हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया पता की हाल है सरदार साहब होनी शीसगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं सी पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर से वो थले डिग पे दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की तीसरे ने वह जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाली भी सिखा चट फूकते थे अग लाती उड़न बह गए जी बीबी जी सी वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना कौन ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी जाके हम वी सी आर वेखना सी यह कोल सी बाकी कुछ नहीं सी गहने पाए सी उन्हां दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरी जाके छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा विआह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए गुरु गोबिंद सिंह साहब एव सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसी उठो अपने साहबजादे नूं कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हां कोल एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कहीं नहीं जाती लेकिन मैं कहना सिंगो यह पांच शस्त्र रखो धड़क धार अलियर ऐसे तीर रखो बार आने लगे नाल आंदरा कमंध कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हों सरिए लैके आते ना मारन वह सरिया लैके जो आवे कमंध कोरड़ा एवं भुआ के सरिए से मारी वह फिर एवं वल पा के सरिए काबू कर ल खिच के सरी अगले का अपने हाथ च फड़ लेता उन्होंने हथे कर सकता इको ही छुट्टी का बस फिर बोले जो दिया इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो यह तुसी पढ़ करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना डरना नहीं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत छकाया खंडे का अमृत क्यों छकाया जी कृपाल का भी शिकार सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत तो महाराज ने उन्हू पानी घोल के सिख न प्यारता मौत घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत घोल के पी गया तो दुष्ट कहता मैं तेन वेख लूंगा मार दूंगा तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਲਾਊ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

देखन फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा। हर का नाम हृदय नित ध्याई सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है नाम जपे है और जपन गे हे प्रभु कृपा करी उना सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह क्यों दिन फिर उना दे अंग संग हुंदा है। गुरु गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले। जो सिमरन गे परमेश्वर दा नाम साईं दा नाम आख्या सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले। और जद नाम जपेगा प्राणी नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक है बिप विचार किच नाहीं जल ते उपज तरंग जियों जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है पाणी नूं मंदा है ते की कहिंदा है तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है मैनू दुख विच रखिया है ए तेरा ही हुक्म है तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श मैं तेरा सिमरन करां अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करां। और जो परमात्मा दी भक्ति करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साई मिया मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रहे फिर भी उसके हुक्म विच रहे ऐसा कौन है कृपा करो सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करने वाला भी है ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे साई मियां मीर समा आवेगा ये जो अखर असी लिखे हन जो अखर उचारे हन इना ते अमल भी करके दसांगे ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या ता आख्या इस तो सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तो अच्छा है उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज ने कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां साहब जी ने क्या अच्छा जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नू जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है ता चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी ए तुसी चंगा नहीं कीता गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई ता दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं ते जदों साहब जी ने मना कर दिता ता ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए ता मेरी बड़ी बेदबी कीती है ना गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता इन्हां नू अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा ता फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नू कि आप लाहौर आओ अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह ता सब कुछ जानते सन जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तो कुछ प्यार वाले नाल तुर पए बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती गरीब निवाज किथे तुरे हो आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं किसे जरूरी काम नू चले हैं ता बाबा बुढ़ा जी ता ब्रह्म ज्ञानी सन जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी ता की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां ता गुरु अर्जन देव जी ने कहा बाबा जी ए राज राज ही रहन देना खोलना नहीं गरीब निवाज चले हो एक वरा मात गंगा जी नो ता दर्शन दे जाओ जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

मिला श्रीधर बिनवंत नानक बिनवंत नानक बिनवंत नानक नानक बिनवंत नानक मिला श्रीधर सगल आनंद।

बाल मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर न होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारिआं नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सभना का

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है, साध संगत आज दे नुकसान कुल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, ये जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदी। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होने का मन विच माण नहीं, कहंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

जन्म दिन आ रहे है मेरे नानक दी वरे गंड है कि मेरा नानक आवेगा या हर साल दी तरह ए जन्म दिन भी उड़ीकां विच लंघ जाएगा। बुढ़ा बाबा कालू अखां विच अथरू भर के कहन लगे तृप्ता इन्ना लाडला पुत्र है मेरा नानक ओनू दुनिया दा फिकर है दुनिया दे उधार वास्ते कारोबार दे सुख छड के दुनिया नू सुख देण वास्ते तुरे है पर साडियां अखां ओनू देखण वास्ते तरसदियां ने। हर साल इस दिन दी उडीक करदे हां कि मेरा नानक आवेगा पर हर साल ए जन्म दिन दा दिन लंघ जांदा है। अथरू किरदे हां उडीकदे हां। माता तृप्ता जी कहन लगे पर इस वारी इस तरह महसूस हुंदा है कि जिवें मेरा नानक जरूर आवेगा इस वारी अपने नानक दा जन्मदिन अपने पुत्र दा जन्मदिन इसे घर विच मनाया जाएगा। कहंदिया कहंदिया माता तृप्ता जी दियां अखां विच वी अथरू आ गए। सवेर बीती दोपहर हो गई। मेहता कालू जी वेड़े विच बैठे अखां बाहर दरवाजे वाले ने। इन्ने नूं मेहता कालू जी आवाज मारदे ने गुरु नानक साहिब जी दे

मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचाने आसी, नानकी नहीं सानू के आसी कि ए अर्शां तू आया है। इस नु पुत्र ना समझो, ए आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है ते मैनु जापदा है जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जय राम जी वो भी आ रहे हैं। बेबे नानकी वेड़े विच दाखिल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिआ कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्हूं भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुक

गले लग के मिले तेनू गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारा पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर वो जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हां तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैन।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे, तां बेबे नानकी छत तों थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके।

अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वह पति भी ने, पुत्र भी ने, वह भरा भी ने, वह सज्जन मित्र भी ने, वह गुरु भी ने, वह पीर भी ने। उन्होंने दुनिया नूं प्यार वंडिया ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असीं भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नूं प्यार देंगे, लोकां नूं प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

राम भगत अणियाले दी कि ए प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हू लग जा जिन्हू तीर लगते ने ओही जाने।

0: गुर समरथ दें
1: राजन में तू
0: राजा कहिए घूम मैं घूमा समरथ दें राजन में